पंख बसेरा राहो चंद ना होता सूर ना होता पानी पवन मिलाया सास्त ना होता वेद ना होता कर्म कहां ते आया खेचरे पूचरे तुलसी माला गुरस प्रसादी पाया नामा परन वै परम तत है सतगुरु हुई लिखाया राम कली कर दूजा बनारसी तप करे उल्ट तीर्थ मरे अगन दहे काया कल्प कीजे असमेद जा कीजे सोना गर्भ दान दीजे राम नाम सर तौ ना पूजे छोड़ छोड़ रे पाखंडी मन कपट ना कीजे हर का नाम नित नित है लीजे रहो गंगा जाओ गोदावरी जाइया कुंभ तो केदारे नाइया गोमती सहस गौदान कीजे कोट जो तीर्थ करे तो जियो हवाले गारे राम नाम सर तो ना पूजे आस दान गज दान सहसा नारी पूम दान ऐसे दान नित नित है कीजे आत्म जो नरमायल कीजे आप बराबर कंचन दीजे राम नाम सर तो ना पूजे मने ना कीजे रोस जमे ना दीजे दोस निर्मल निर्बाण पद चीन दीजे जस रथ राय नंद राजा मेरा राम चंद परन वैं नाम तत रस अमृत पीजे राम कली बाणी रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद पढ़िया गुणिया नाम सब सुनिया अनपो पौ ना दरसे लोहा कंचन हिरन होए बैठ कैसे जो परसै ना परसै देव संस गांड ना छूटे काम क्रोध माया मद मत्सरे इन पंचो मिल लूटे रहो हम बड़ कब कलीन हम पंडित हम जोगी सन्यासी ज्ञानी गुणी सूर हम दाते ए बिद कबू नासी कहो रविदास सबे नहीं समझस पूल परे जैसे बौरे मोहादार नाम नारायण जीवन प्राण तन मेरे राम कली बाणी बेणी जियो की एक ओंकार सतगुरु प्रसाद ईड़ा पिंगला और सुखमना तीन बसे एक ठाई बेणी संगम तह पराग मन मंजन करे तथाई संतो तहा नरिंजन राम है गुरगम चीने बिरला कोई तहा नरिंजन रमैया होई रहो देव स्थाने क्या निशानी तै बाजे शब्द अनाहद बाणी तै चंद ना सूरज पौन ना पानी साखी जागी गुरमुख जानी उपजे ज्ञान दुरमत सीजे अमृत रास गगनंतर पीजे एक कला जो जाने पियो पेटे तास परम गुरदेव दसम द्वार अगम अपारा परम पुरख की काटी ऊपर हाटे हाट पर आला आले पीतर थाते जगत रहे सो कबू ना सोवे तीन तलोक समाध सपलोवे पांच मंत्र ला हिरदे रहे मनवा उल्ट सुन मैं गहे जागत रहे ना अलिया पाके पंचो इंद्री बस कर राखे गुर की साखी राखे चीत मन तन अर्पे किशन प्रीत कर पलव साखा बिचारे अपना जन्म न जुए हारे असर नदी का बंदे मूल पच्छम फेर चढ़ावे सूर अजर जरेसु निजर चरै जगन्नाथ सिंह गोष्ठ करै चौमुख दीवा ज्योत द्वारे पल्लू अंत मूल विचकार सर्व कला लै आपे रहे मन मन करत नामै गोहे मस्तक पद्म द्वाले मणि माहे नरिंजन तिर पवन पणि पंच शब्द नर मायल बाजे टुल के चवर संकन गाजे दल मल दाते गुरमुख ज्ञान बेणी जाचे तेरा नाम राग नाटे नारायण महला चौथा एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निरवैर अकाल मूर्ति अजूनी सह भंग गुर प्रसाद मेरे मन जप एनस नाम हरे कोट कोट दोख बौकीने सब पर हर पास तरे रहो हर हर नाम जपे अरादे सेवक पाए खड़े किल विक दुख गए सब नी करे ज्यो पानी मैल हरे खिन खिन नर नारायण गावे मुख बोल है नर नर हरे पंच दोख

वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु,

करता करना मैं नाही जा हव करी न होई बलहारी कुदरत वसया तेरा अंत न जाई लखे आऊं।

करतार। मोर अच्छा निज कर दय करिए, सब बैरन को आज संगरिए, पूर्ण होए हमारी आसा, तोर भजन की रह प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं, जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं।

त्याओ पै संबत सत्रह सहस पणिध्याय अर्ध सहस फण तीन कहिध्याय पाद्रव सदी अष्टमी रव बारह तीर तद्रव ग्रंथ सुधारा

दलय तुम मम करो सदा प्रतपार तुम साहे मैं दा तिहार जान अपना मुझे निवाज आव करो हमरे सब काज तुम हो सब राजन के राजा आपे आप गरीब निवाजा।

पूरे पारब्रह्म प्रभुपाया पुत्रे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पहे सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित्र

ठाकुर साध संगत सच खंड वसाया वाहे गुरु गुर शब्द सुनाया हर की वडियाई हो आख ना सका हो मूर्ख मुग्ध नी जान जन नान ओ हर बख्श लै मेरे स्वामी।

गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु

गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

जी के दाते प्रीतम प्रभ मेरे, मन जीव प्रभ नाम चितेरे। सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी, शीतल पुरख दृष्ट सुजानी।

जिसका कारज तिन्हीं किया, मानस क्या बेचारा राम। भगत सोहन हर के गुण गावे, सदा करह जयकारा राम। गुण गाए गोबिंद आनंद उपजे,

प्रभु कै सिमरन तीर्थ शलानी, प्रभु कै सिमरन दरगह मानी, प्रभु कै सिमरन हुए सो भला, प्रभु कै सिमरन सफल फला, से सिमरे जने आप सिमराए, नारगता के लागो पाए। प्रभु का सिमरन सबते उच्चा, प्रभु कै सिमरन उदराय मोचा, प्रभु कै सिमरन तृष्णा बुझा, प्रभु कै सिमरन सबके सुजा, प्रभु कै सिमरन नाई जम त्रासा, प्रभु कै सिमरन पूर्ण आसा, प्रभु कै सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम हृदय माहे समाए। प्रभु जी बसे साध की रसना, नानक जन का दासन दसना, प्रभु को सिमरे से धनवंते, प्रभु को सिमरे से पतवंते, प्रभु को सिमरे से जन प्रवान, प्रभु को सिमरे से पुरख प्रधान, प्रभु को सिमरे से बेमहताजे, प्रभु को सिमरे से सर्व के राजे, प्रभु को सिमरे से सुखवासी, प्रभु को सिमरे सदा विनाशी, सिमरन ते लागे जने आव दयाला, नानक जन की मंगे रवाला, प्रभु को सिमरे से परोपकारी, प्रभु को सिमरे धन सदबलहारी, प्रभु को सिमरे से मुख सुहावे, प्रभु को सिमरे तन सुख बिहावा, प्रभु को सिमरे तन आत्म जीता, प्रभु को सिमरे तन निर्मल रीता, प्रभु को सिमरे तन आनंद घनेरे, प्रभु को सिमरे बसे हर नेरे, संत कृपाते अंधे न जाग, नानक सिमरन पूरा भाग, प्रभु कै सिमरन कार्ज पूरे, प्रभु कै सिमरन कबूना चूरे, प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभु कै सिमरन सह समानी, प्रभु कै सिमरन निचल आसन, प्रभु कै सिमरन कमल विगासन, प्रभु कै सिमरन अनहद चुनकार,

नौखंड पृथ्वी फिरा चिर जीवा मां उदास पी सर थी वह अग्न माय होमत प्राण कनक सब है भरपूम दान न्यवली कर्म कर बवासन जैन मार्ग संयमत साधन निमक निमक कर शरीर कटावे तापी होमे मैल न जावे हर के नाम समसर काश नाहे नान गुरमुख नाम जपत गत पाहे।

दास कर चले जय प्रसाद संपूर्ण फल है जय प्रसाद परमगत पावे जय प्रसाद सुख सहज समावे ऐसा प्रभ त्याग अबरकत लागो हो गुरु प्रसाद नानक मन जागो जय प्रसाद तू प्रकट संसार तिस प्रभु को मोल ना मनो विसार जय प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूर्त ताको जाप जय प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे जय प्रसाद तू पावे साज रे मन मेरे तू तासराज जय प्रसाद सबकी गत होए नानक जाप जपै जप सोए आप जपाए जपै सो नाऊ आप गावाए सो हर गुन गाओ प्रभ कृपा ते हुए प्रकाश प्रभु दया ते कमल विगास प्रभ सुप्रसन्न बसे मन सोए प्रभ दया ते मत उत्तम होए।

प्रसाद साधक संग सुनो हर नाम साध संग हर के गुण गाओ साधक संग नामंते बिसरा साध संग सर पर निस्तरा साधक संग लग गया परा मीठा साधु कै संग घट गया डीठा साध संग भया गया कारी साध संगत भई हमारी साधक संग मिटे सब रोग नानक साध बेटे संजोग साध की महिमा वेदना जाने जेता सुने तेता बखियाना साधु की उपमा तय गुण तय दूर साधु की उपमा रही प्रभुर।

ब्रह्मज्ञानिकाय विमहान ब्रह्मज्ञानी उचते उच्चा मन अपने सप्ते नीचा ब्रह्मज्ञानी सेजन भय नानक जन पर व्याप करे ब्रह्मज्ञानी सगल की रीना आत्मरस ब्रह्मज्ञानी जीना ब्रह्मज्ञानी की सब पर भया ब्रह्मज्ञानी ते काश बुरा न भया ब्रह्मज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्मज्ञानी की दृष्टमृत बरसी ब्रह्मज्ञानी बंधन दे मुक्ता ब्रह्मज्ञानी की निर्मल जुगता ब्रह्मज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्मज्ञानी एक उपरयास ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्मज्ञानी का गरीबी समाहा ब्रह्मज्ञानी परोपकार उमाहा ब्रह्मज्ञानी का नाही तंदा ब्रह्मल्य तपत बंधा ब्रह्मज्ञानी का हो सो पला

निर्मलमंत ब्रह्म ज्ञानी जिसकर ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रता ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइय ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइय ब्रह्म ज्ञानी को खोजे में शरणान ब्रह्म ज्ञानी आ परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है ब्रह्म ज्ञानी का सगल मन माहे है।

ज्ञानी की गात है ब्रह्म ज्ञानी जाना है ब्रह्म ज्ञानी का अंतरा पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता ब्रह्म ज्ञानी सत जीव है नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता।

मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट दर्शन पेखत उदरत श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप धन सेवा सेवक प्रमाण अंतर जामे पुरख प्रधान जिसमन बसा सोध निहाल ताके निकट न आवद काल अमर भय अमरावत पाया साह संग नान करते आया सलो।

आप छोड़ बेनती कर हाओ सासंग अगन सा करत रहो हर धन के भर लियो भंडार नानक गुरपुरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद सासंग भज परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चित चितवो नारायण एक एक रूप जागे रंग अने गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर ना बारंबार नानक जी का यह आधार उत्तम सलोक साध के बचन अमलीक लाले रतन सुनत कमावत होत उधार आप तरह लोके निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जागे मन लागा हरंग जय जय शब्द अनाहत वाजे सुन सुन अंत करे प्रभु गाजे प्रगटे गोपाल मांद के माथे नान उदरे तन के साथे शरण जोग सुन सरणी आए कर कृपा प्रभु आ मिलाए मिट गए बैर भय सब रेन अमृत नाम सा संग लैन सुप्रसन्न भये गुरुदेव पूर्णोई सेवा की सेवाल जंजाल बिगार ते रहते राम नाम सुंदर सना कहते कर प्रसाद दया प्रभु धारी नानक निभी खेप हमारी प्रभु की उस्तत करो संत मी सावधान एकागर चीत सुखमनी सहज गोविंद गुरु नाम जिसमन बसाए सो निधान सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते ऊज पाए स्थान बावर न होवे आमन जान हार धन खाट चला जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए खेम सांत रद नव निध बुद्ध ज्ञान सर्वदय सिद्ध विद्या ताप जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रगा सबका माध्य सगल ते उदास सुंदर चतुर तत का बेता समदर्शी एक दृष्टिता ए बल तिस जन का मुख भने गुरु नानक नाम वचन मन सुने यो निधान जपाय मन कोय सब जुग मै था की गत हुए गुण गोविंद नाम तुन बाणी सिमृत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोविंद भगत गाय मन विश्राम कोट परा सा संग मिटाय संत कृपा ते जमते छुटाय जाकै मस्तक करम ब्रह्माय सा सर नानक ते आए जिस मन भसा

परम ज्योत परमेश्वर प्यारा जगमग ज्योत निरंतरी जग जीवन जय जय कारा नमस्कार संसार विच आदि पुरख आदेश अधारा चार वर्ण छे दर्शना गुरमुख मार्ग सच अचारा नाम दान इसनान दृढ़ पाए भगत गुरमुख निस्तारा गुर अर्जुन सच सिरजनहारा

गायो दुर्वासा ऋषि जिन्ने च उन ज्ञान नहीं होया उन्ने च गुण होर गाउंदा रहा। जदू उस अकाल पुरख दे गुण गाए ते उन्ने उवें गुरु नानक साहिब दस्या ते गुरु नानक महाराज साहिब ते गुण गाए। पुरूरो ते अंगद ऋषि जेड़े आ उन्होंने किते गुण गाए आ उन्होंने भी गुरु नानक साहिब महाराज साहिब दे गुण गाए आ। जिस नूं ज्ञान होया ते जिहड़ा पीर दस्तगीर झूठ बोलता सी कि मैं दस्तगीर हाँ, जिवें अजकल साढ़े कई झूठ बोलते हैं कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हाँ मैं संत हाँ, लेकिन जदों गुरु नानक साहिब महाराज साहिब की संगत होई उदों गुरु नानक साहिब नूं इन्ना ही गाउण लग पिया कि जदों वो गुरु नानक साहिब के मिलाप तों बाद 8 साल सी करके रहा कि गुरु नानक साहिब महाराज साहब के कोलों उसने अरदास करके उतों के नवाब नूं पुत्र की दात रख दित्ती सी। जदों गुरु नानक के गुण गाए उहदा इतिहास पढ़ोगे तुहानूं उहदे बाद एक दिन नहीं मिलेगा कि उन्हें मस्जिद विच आ के बांग दित्ती होवे जां उन्हें नमाज कीती होवे। वो अपने शब्द सुर उस गुरु नानक के चरणां नाल जुड़दा है ते जुड़े हुए नूं इन्ना प्राप्त हो गया कि उही नवाब आया कि उन्हें आके आख्या पीर जी मैं भुल गया इन्ना चिर हो गया

समाना ठाकुर तेरो और ना काहू तानी, ऐसो अमर मिलो भगतन को राज रहे रंग ज्ञानी। रोग सो दो जरा मरा हर जाने नहीं निकटानी, निपोए रहे लिवेके नानक हर मन मानी। टोडी महला पंजमा हर बिसर सदा खुआरी, ताको तोखा कहा ब्यापे जाको ओट तुहारी। रहाओ

जैस मरत संकट मिट दर्श तुहारो होए। मुदामणी महला पंजवां। थाल विच तिन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो। अमृत नाम ठाकुर का पईओ जिसका सब साधारो। जे को खावे जे को पूंचा तिसका होए आधारो। ए वस्त जे ना जाए नित नित रखो रतारो।

प्रसाद रागमाला राग एक संग पंच बरंगन संगा लापु अठो नंदन प्रथम राग पैरे उवे करहे पंच राग ने संगो चरहे प्रथम पैरवी बलावले पुनिया की गावे बंगले पुनसले की पई बारी ए पैरों की पंचो नारे पंचम हरखद साग सुनावे बंगालम मद माधव गावे ललत बिलावल गावे अपने अपने पात अष्ट पुत्र पैरव के गावे है गायन पात्रे द्वितीया मालक सक अलापे संग रागने पंचो थापे गौंड करी और देव गंधारी गंधारी से होते उचारी तनासरी पंचो गाये माल राग कौ सक संगलाए मारू मस्त अंग में वारा परबल चर कौ सक अबारा कौ खटे उपवरा नंद गाये अष्ट माल कौ सक संगलाए पुने आयो हंडोल पंच नारे संग अष्ट सुत उठे है तान कलोल ता गायन तार मिलावे ता लंगी देव करी आई बसंती संदूर सहाय सर सिहरी लै पार जा संगलाई पंचो आर जा सुरमा नंद पास करे आए चंद्रन बिंब मंगलन सहाय सरस बाणे आहे बनोदा गावे सरस बसंत कमोदा अष्ट पुत्र मैं कहे सवारी पुने आई दीपक की बारी का छेली पट मंजरी टोडे कही अलाप का मोदियो गुजरे संग दीपक के थाप का लंका कुंतलो रामा कमल कुशम चंपक के नाम गौड़ाओ कनड़ा कल्याणा अष्ट पुत्र दीपक के जाना सब मेल सिरे रागवे गावे पांचो संग बरंगन लावे बरराड़ी करनाटी तरी गवरे गावे आसा वरे ते पाछे सिंधवी आलापे श्री राग से पांचे उथापे सालू सारग सागरा और गौंड गंभीर अष्ट पुत्र श्री राग के गुंड कुंभ हमीर कष्टम में गराग वै गावे पांचों संग बरंगन लावे सोरठ गौंड मलारी तुनी पुन गावे आसा गुण गुणी उच्चे सुर सहयो पुन कीनी मेघ राग सिंह पंचो चीनी बैरा तर गज तर के दारा जबले तर नट्यो जल तारा पुन गावे शंकर श्यामा मेघ

राग सुखी शांत महला पहला कार पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद पर जोवन मैं मत पहिड़े कर पाउनी बलराम जियो मैली अवगण चित बेन गुर गुण न समावनी बलराम जियो।

मन वसाए हर की अमृत बाणी जिन मन वसिया सही जन निस्तरै घट घट शब्द समाणी तेरे गुण गावै सहज समावै सब दे मेल मिलाए नानक सफल जन तिनकीरा जे सतगुर हर मार्ग पाए।

ठाकुर पाए चलो जीवत्या ये मरिए राम जीवत्या मरिए पाओ जल तरिए गुरमुख नाम समावे पूरा पुरख पाए अठभागी सच नाम लीलावे मत प्रगास पाए मन मानिया राम नाम बढ़ियाई नानक प्रभ पाया शब्द मिलाया ज्योति ज्योत मिलाई सूहे महला चौथा कर पजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

जल तल मैयल सोये जन नानक पुर की शरणाई तिस बिन अवरणा खोई मेरा कर बनया मन ताल बनया प्रपर से हर राय रा मेरा मन सोया मीत साजन सस्य गुण मंगल हर गाया रा गुण गाए प्रभ जय साचा सगल इच्छा पाया गुरु चरण लागे सदा जागे मन वजिया वधाया करि नजर स्वामी सुख गामी अर्थ परत सवारिया बिनवंत नानक नित नाम जपिए जियो पिंड जिन तारिया सोई वल्ला पुजा पैसा करो पैसा कर करिया हर हर नाम चाहे रा बहुत तड़ा हर चरण करा दे मेरे सतगुरु पार लंघाया रा गुर शब्द जी तरिया बोड़ना मरिया चूके आवन जाना जो किच करे सोए पल मनो ता मन सहज सवाणा दुख न भोग न रोग बिना व्यापे सो गुर सागर सरणी पाए हर सिमर सिमर नानक रंग राता मन के चित मिटाए संत जना हर मंत्र दृढ़ाया हर साजन वसगत की ने राम अपना मन आगे तरिया सर्वस ठाकुर दी ने राम कर अपनी दासे मिटिए दासे हर मंदिर तित पाई अणद मिलो सिमरो प्रभ साचा विचड़ कबो न जाई सावट

सर्व मंडल छाया ब्रह्म है, ब्रह्मो पसारा ब्रह्म पसरिया सब ब्रह्म दृष्टि आया, जल तल मयल पूर्ण तिस बिना नहीं जाए, एक दर्शन नानक भिक्षे आप बुलाए मिलाए, सूही महला पंजा आवचर नगर गोविंद गुरु का, नाम जपत सुख पाया मन चे से ही फल पाए, करते अब साया रा करते अब साया सब सुख पाया, उठ पाए सिख विकासे गुण गावे पूर्ण परमेश्वर कार्य आया रो से आप स्वामी आपे रखा आप पिता आप माया कहो नानक सतगुर बलिहारि जिन ए थान सोया हर मंदिर लटराने सोए, जिस विच नाम विलास निवासी राम

अच्छे फल पाए। सन सज्जन सुख माने रलिया, दुख दर्द परमनासी। सब सारे सग पूरे नानक सद मिलिया सी, दास कस की पूरी होई, नेत्र नि

संग संग बने जिन उद्यम किया ताल के रहते किए उपा क्या गणे आठ पुण्य क्रिया निर्मल चारा पतित पावन बिरद स्वामी नानक शब्द पारा गुण निदान मेरा प्रभु करता उस्तुत कौन करीजा।

जोबन खोए पाछे पछतानी रहाओ काली कोयल तू कित गुण काली अपने प्रीतम के हाओ बिरह जाली पिरे बहुन कतै सुख पाए जाहो कृपाल तब प्रभु मिलाए विदन खुही मुंद अकेली ना को साथी ना को बेली कर कृपा प्रभ साध संग मिली जा फिर देखा ता मेरा अलहो बेली बाट हमारी खरी उडीनी खन्यो तिखी बहुत पीणी उस ऊपर है।

पर सरवर जब उछलै तब तरन दहिला हथ न लाए कुसुम्बड़ै जर जासी ढोला रहाव एक अपने पतली सहकीरे बोला दुद्धा थणी न आवै फिर होए न मेला कहे फरीद सहेलियो सौ आलाए से हंस चल सी डूम

सकै प्रभ हम क्यों कर मुगद तरा मेरे मन जप नर हर नाम नर हरा जन ऊपर कृपा प्रभ धारी मेरे सतगुरु पार परा रहाओ हमरे पिता ठाकुर प्रभ स्वामी हर दिहो मती जस करा तुमरे संग लगे सो उदरे ज्यो संग काष्ट लोहो तरा साकत नर होसी मत मध्यम जिन हर हर से

आवो संत मिलो मेरे भाई, मिल हर हर कथा करहो, हर हर नाम बोहित है कलयुग, खेवट गुर शब्द तरो, मेरे मन हर गुण हर उचरहो।

नानक मूर्त चित्र जू छाड़त नाहिन पेत नर चाहत कछ ओर ओरै की ओरै पै चितवत रोठ गोर नानक फासी गल परी जतन बहुत।

करे कछु न होत उपाय। को नानक अब ओट हर गज जू हो सहाय। बल हुआ बंधन छुटे सब किच होत उपाय। नानक सब किच तुमरे हाथ में तुम ही हो सहाय। संग सखा

प्रसाद जगदाता सोए भगत वछल तेह लोए जियो गुर शब्द समावे अवर न जाने कोए जियो अवर न जाने शब्द गुरु कै एक नाम त्यावे।

हर भाणा गुर पाया मेरा हर प्रभ करै शाबास जियो भगत सतगुर पुरख सोई जिस हर प्रभ भाणा पावे आनंद।

पद निर्वाणी को बिरला गुरमुख बूझै ओ शब्द समाया भगवाए त्रिपवन सोजी सूझै रहे अतीता परंपराता साच नाम गुण सारिया ओह पूर रहे सर बठाई नानका उर तारिया महल बुलाएड़िए